0: साउथैम्पटन एक खूबसूरत तारीखी शहर, समंदर की नीली लहरों के किनारे ये आबाद शहर अपने अंदर कितने राज छुपाए हुए हैं। मेरी जवानी का शहर, जिसकी गोद में मैंने कितने सुनहरे दिन गुजारे हैं, मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। इसी शहर के दिल के अंदर हमारा एक कम्युनिटी रेडियो आवाज़ ने जन्म लिया है और इसके अंदर भी कितनी आवाज़ें पोशीदा हैं, उनमें एक प्रोग्राम शेर व नगमा भी है। ज़िंदगी के दो बड़े साथी, हमारा शेर व नगमा हर जुमेरात को दिन के 2 बजे शुरू होता है। मेरा नाम मकबूल अहमद सईद है और मेरे बादशाह आसिफ अली साहब मेरे नगमागर मेरे साथ होंगे। हमारे दरबार के दरवाज़े सब के लिए खुले हैं, ज़रूर इसमें शामिल हों, वक्त किसी का दोस्त नहीं। ये सांसों की जादूगरी न जाने कब थम जाए, वक्त के साथ चलें, वक्त की तज़ीम करें। आखिर में 2 शेर, जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर्द था यह खुशबू, जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर्द था यह खुशबू, ये वो हंसता रोगी जाने जिसने ज़ख्म छुपाए हैं। शम्मे बज़्म में तरब बुझ जाए फिर अपने भी पराए हैं, दिन डूबे तो छुप जाते हैं, साए आखिर साए हैं।
1: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here, and your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
2: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
3: Radio, the medium that's now large.
4: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@hoursfm.co.uk.
5: एक पल की लापरवाही।
6: अंकल, मुझे तो बड़ी हो के एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: I know. How do we get Finnish listeners?
3: I don't know.

0: हम सॉरी बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: From the flight path at Southampton Airport to the ocean terminal at Southampton Docks, you're listening to Hours FM.

0: respect everyone's journey.
1: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
3: FM. 99.8 Hours FM.

0: एक पल की लापरवाही।
1: अंकल मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: From the South's premier city, this is Ours FM 99.8.
1: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
3: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. Awaz FM on 99.8.
4: साउथहैम्पटन एक खूबसूरत तारीखी शहर समंदर की नीली लहरों के किनारे ये आबाद शहर अपने अंदर कितने राज छुपाए हुए हैं मेरी जवानी का शहर जिसकी गोद में मैंने कितने सुनहरे दिन गुजारे हैं मैं तुम्हें सलाम करता हूँ इसी शहर के दिल के अंदर हमारा एक कम्युनिटी रेडियो आवाज़ ने जन्म लिया है और इसके अंदर भी कितनी आवाज़ें पोशीदा हैं उनमें एक प्रोग्राम शेर नगमा भी है ज़िंदगी के दो बड़े साथी हमारा शेर नगमा हर जुमेरात को दिन के 2 बजे शुरू होता है मेरा नाम मकबूल अहमद सईद है और मेरे बादशाह आसिफ अली साहब मेरे नगमागर मेरे साथ होंगे हमारे दरबार के दरवाज़े सब के लिए खुले हैं ज़रूर इसमें शामिल हों वक्त किसी का दोस्त नहीं ये सांसों की जादूगरी न जाने कब थम जाए वक्त के साथ चलें वक्त की तज़ीम करें आखिर में दो शेर जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर्द था यह खुशबू जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर्द था यह खुशबू ये वो हंसता रोगी जाने जिसने ज़ख्म छुपाए हैं शम्मे बज़्मे तरब बुझ जाए फिर अपने भी पराए हैं दिन डूबे तो छुप जाते हैं साए आखिर साए हैं

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: Assalamu alaikum. It's really nice to listen to your show. Some of the stuff you talk about is very intellectual in different languages, but I get the gist of most of it, and I like listening to the different tunes that you play.

0: आई एम सॉरी बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: From the flight path at Southampton Airport to the ocean terminal at Southampton Docks, you're listening to Hours FM.
4: Hello, this is Ruxana Simro. I'd like to dedicate this to Hours Radio Southampton and the whole team. Naam gum jayega, chehra badal jayega, meri awaaz hai pehchaan. Thank you, Ali.
3: Southampton's community.
4: Jaiga. Meri awaaz hai pehchaan. Thank you, Ali.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: Awaaz FM, local radio. Communities making waves, turning the tide on isolation.

0: ये जुल्फें जो रुखसार पे गिरा रखी हैं, ये जुल्फें जो रुखसार पे गिरा रखी हैं, किसी की धड़क ने यूं ही बढ़ा रखी हैं। सुर्ख रुखसार पे वो तिल तौबा, कितनों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। मैकदों में वीरानी सी छा गई है, मैकदों में वीरानी सी छा गई है, यो आपने महफिल की रौनक सजा रखी है। नजरों के प्यालों से छलकते जामिए, नजरों के प्यालों से छलकते जामिए, हर सू मैकशों की बाढ़ लगा रखी है। हुस्न आपका ये मरमरी बदन जानम, हुस्न आपका ये मरमरी बदन जानम, मुसव्वरी की आपने हर हद ढा रखी है। सितम न कीजिए झुका लीजिए नजरें, सितम न कीजिए झुका लीजिए नजरें, क्या मुझे मदहोश रखने की कसम खा रखी है।
1: एक पल की लापरवाही, आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
2: Just because I'm a driver doesn't mean I can see you.
3: Just because you're at the speed limit doesn't mean you're not dangerous.
4: Just because you're in a rush doesn't mean you can ignore the crossing.
5: Just because you're driving doesn't take away my right of way.
6: Just because it seems clear doesn't mean you shouldn't stop.
7: Just because you are surrounded by metal doesn't mean I'm not flesh and blood.
8: Just because you're nearly home doesn't mean you are.
9: One in every five road deaths is a pedestrian. Just because you use the road doesn't mean you own it. Respect everyone's journey.
10: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more.

0: If it's happening in Southampton, we've got the news. The Southampton Talking Newspaper, every Monday at 8 a.m, only on Hours FM.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
2: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
4: In chote mote programon se kitna kama lete ho?
5: Jitna bhi kama leta hu, khush hu. Do roti ke saath public ka pyar mil jata hai. इससे ज्यादा और क्या चाहिए

0: चलते हैं पाकिस्तान, लाइन पर हैं अजमल शोभी।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम,
1: आपको वेलकम कहता हूं मैं कराची पाकिस्तान में।
0: हाँ जी शुक्रिया।
1: मैं सामीन को सबसे पहले तो है कि आवाज़ एफएम टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा मैं कि उन्होंने अपनी काबिज को जो है वो एक इस तरह आगे पहुंचाया है कि एक लिसनर को एक ऐसा चैनल मिल गया सुनने के लिए कि जहां पर वो अपनी पसंद का खूबसूरत सब म्यूजिक भी सुन सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी सुन सकते हैं और बहुत सारी मालूम उन्हें फ्राहम होंगी आवाज़ से। और उसके साथ साथ जो है तमाम लिसनर्स को जो इस वक्त मुझे यूके में सुन रहे हैं, तमाम लिसनर्स को मैं मुबारकबाद दूंगा आवाज़ एफएम की जानिब से। मेहरबानी, तो आवाज़ एफएम में इतने खूबसूरत लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं मुसलसल ट्रांसमिशन को सुन रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ आप सबके साथ, बहुत खूबसूरत म्यूजिक भी मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है और पाकिस्तान से भी प्रोग्राम हो रहे हैं, यूके से प्रोग्राम हो रहे हैं, तो बड़ा ऐसे अजीब बड़ा खूबसूरत कहते हैं मिला जुला सा माहौल होता है। जब कहते हैं ना कि बड़े हसीन खूबसूरत फूलों को हम यज्जा करते हैं तो एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा अट्रैक्टिव जो है गुलदस्ता बन जाता है,
0: और अजमल साहब इधर भी अपना ये जो रिसेंट ईयर्स जो गुजरे हैं ना, इनमें पाकिस्तानी और इंडियन हमारी जो अपनी कम्युनिटी है एशियन, ये काफी ज्यादा बढ़ गई है और इस चीज की जरूरत थी कि जो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म इधर मिलना चाहिए जिसमें हमारे अपनी कम्युनिटी की पहचान हो, हमारी बात हो, और उसके लिए ये बहुत अच्छा कदम जो है ये उठाया है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा कदम है और इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ आवाज़ एफएम की टीम को।
0: थैंक यू वेरी मच।
1: बस थैंक यू वेरी मच, और मैं बस तमाम लिसनर्स को कहूंगा कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें और एंजॉय करें, और उम्मीद करता हूँ कि भी हमारे आगे डीजे से प्रोग्राम करेंगे यहाँ पर, उन सबके साथ खूब इंजॉय कीजिएगा और बिल्कुल ये आपका अपना एक फैमिली चैनल होगा इंशाल्लाह ताला, और बिल्कुल आप आवाज़ एफएम को अपने एक फैमिली चैनल की तरह पाएंगे, इनके तमाम आरजेस को आप अपने एक फैमिली मेंबर्स की तरह पाएंगे, बच्चों के मिलने जुलने से मोहब्बत बढ़ती है और जब मोहब्बत बढ़ती है तो कहते हैं दूरियाँ खत्म हो जाती हैं, तो बस इसी दूरी के साथ इसी मोहब्बत के पैगाम के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिंदगी बखैर।
0: Thank you very much, ji. Take care, Allah Hafiz. Bye-bye.
2: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that. An enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel. All of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
3: Radio. The medium that's now large.
4: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@hoursfm.co.uk.
5: एक पल की लापरवाही।
6: अंकल, मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: If it's happening in Southampton, we've got the news. The Southampton Talking Newspaper, every Monday at 8 a.m. only on Hours FM.
4: Hello, Ali. Malcolm here in Portsmouth. Many thanks for your two phone calls. I am now tuned into Hours, and it's showing clearly on my digital sign on my radio. Lovely to hear you back again. See you soon. Bye.
5: Just because I'm a driver doesn't mean I can see you.
6: Just because you're at the speed limit doesn't mean you're not dangerous.
7: Just because you're in a rush doesn't mean you can ignore the crossing.
8: Just because you're driving doesn't take away my right of way.
9: Just because it seems clear doesn't mean you shouldn't stop.
10: Just because you're surrounded by metal doesn't mean I'm not flesh and blood.
11: Just because you're nearly home doesn't mean you are.
12: One in every five road deaths is a pedestrian. Just because you use the road doesn't mean you own it. Respect everyone's journey.
13: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
14: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए। आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर, और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज, आवाज एफएम के साथ।

अस्सलाम वालेकुम पुत्र, क्या आ रिया थोड़ा प्रोग्राम सुनने पे दोए चंगा प्रोग्राम पे होना पछतावा लगी। अल्लाह कामयाबियां दाई पुत्रा, ते चलो जिले को बेले हो तो साड़ी भी फरमाइश कर लाई छोड़ो ध्या तो जंगी जाई गाना पर मी बड़ा चंगा लग रहा है। पुत्र अटा पर नहीं बिकने तो लभनी फिरने उधार गोड़े नूर जानना एक और लाई छोड़े।

0: Southampton's Community Radio, Hours FM, 24 hours a day, Hours FM, online and on air.
1: Uncle, मुझे तो बड़ी होके
2: एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी होके डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: From Wolston to West End, from Millbrook to Marchwood, this is Ours FM.
1: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
3: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. Awaz FM on 99.8.
4: दोस्तों मैं हूं सीमा सरगम मेरा प्रोग्राम आवाज कैरियोकी क्लब सुनना न भूलिए जो कि हर संडे शाम 6 बजे से 8 बजे तक आवाज एफएम पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है इस प्रोग्राम में आप ही की आवाज में गाए हुए कैरियोकी गीत पेश किए जाते हैं अपने गीत भेजने के लिए व्हाट्सएप का ये नंबर जरूर नोट कर लें नंबर है 07784691440 रिमेंबर आवाज कैरियोकी Club every Sunday 6 to 8 p.m.

0: Radio is the route that's right.
1: Radio, the medium that's now large.
2: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@hoursfm.co.uk.
3: एक पल की लापरवाही.
4: अंकल, मुझे तो बड़ी हो के एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था. मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था. मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: Hi, this is Anna Salman, and you're tuned into Awaaz FM. You can follow me on Instagram @AnnaSalmanDar.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: Hours FM 99.8. Hours FM.

हर माँ के लिए उसका बच्चा स्पेशल होता है, और एक तरफ मेरी माँ जो सारी उम्र मुझे आम सा बनाने में लगी रही, बहुत ही आम सा ट्रीट करती थी वो मुझे। मुझे तो याद तक नहीं कि कभी उसने मुझे स्पेशल समझा हो। बहुत समझाया दुनिया ने उसे कि देख तेरा बेटा स्पेशल है, मगर वो फिर भी अपनी जिद पर अड़ी रही। और देखिए आज उसकी जिद ने मुझे कहां ला खड़ा किया। अपने स्पेशल से बेटे को कैसा कैसा आम सा बना दिया। आज मैं तो शायद स्पेशल नहीं, मगर मेरी मां बहुत स्पेशल है। लव्स तो मेरे पास कभी थे ही नहीं, मगर फिर भी थैंक यू माँ।

0: From the flight path at Southampton Airport to the ocean terminal at Southampton Docks, you're listening to Hours FM.
1: Hello, this is Roxana Simrow. I'd like to dedicate this to Hours Radio Southampton and the whole team. Naam gum jayega, chehra badal jayega, meri awaaz se pehchaan. Thank you, Ali.
0: Southampton's Community Radio, Hours FM.
2: एक पल की लापरवाही.
3: अंकल, मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था. मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था. मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था.

0: Awaaz FM is supporting local radio.
1: Local radio.
0: Communities making waves, turning the tide on isolation.
2: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
3: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
4: You're listening to Awaaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
5: In chote mote programon se kitna kama lete ho?
6: Jitna bhi kama leta hu, khush hu. Do roti ke saath public ka pyar mil jata hai. Isse zyada aur kya chahiye?

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: How do you say it? A was or a was?
3: Assalamu alaikum. My name is Deborah. And can you please play a song for me and my baba? My name is Uswa and my baba name is Amir.

अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल या? मैं हुणी ग्राउंड आया सा, घर प्रोग्राम तो वाला लाया, डाउनलोड कीता, तू बोल से तो मेरे सा कोई फरमाइश कर सा ना।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: Myself, why to write about now? I want to big up hours, radio, large up alley. Look, I'm out here, I'm trying to make it work. I got plans, but the plans don't work. Look, I ain't got to push or move any work. Got a next show, next day I got to work. So I got to push this thing until it works. Man, try push up the in the works. Me, I got bare new tracks in the works. Got willing to find the tracks, I got to work. Look, I ain't got to stress or rest, just work. Too much pressure.

हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ सीमा सरगम और लाई हूँ आपका फेवरेट प्रोग्राम आवाज़ कैरियोकी क्लब। जी हाँ, ये ज़बरदस्त प्रोग्राम होता है क्योंकि इसमें आपके गाए हुए गीत हम शामिल करते हैं, दुनिया भर तक आपकी आवाज़ पहुंचाते हैं। आप हमें सुन रहे हैं 99.8 FM साउथहैम्पटन से और दुनिया भर में इंटरनेट पे अपने स्मार्टफोन पे आप हमें सुनते हैं। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं दावत देती हूँ दनिश वे कॉल द वे फ्रॉम मुंबई और उनका गीत है दिल में जो मेरे समागे। एंजॉय इट।

0: हाय हाय,
1: एक बात बताऊं दोस्त?
2: बता बता, जल्दी बता।
1: एक बार वो मुझे मिलने आई।
2: अच्छा?
1: मैंने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया।
2: फिर क्या हुआ?
1: उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल दी, बस दोनों देखते रह गए।

0: अरे भाई एक दिन उसका टेलीफोन आया, हाँ कहने लगी हेलो
1: हेलो डार्लिंग
0: डार्लिंग,
1: हाँ
0: फिर क्या बोली?
1: बोली मेरे घर में पार्टी है आओ।
0: जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता लगा वहाँ उसकी सिवा कोई भी नहीं था।
1: फिर क्या हुआ?
0: मैं था, वो थी, वो थी, मतलब मैं था,
1: तन्हाई थी।
2: उस दिन हम

0: man on the jukebox.
1: Drive time on a WAZ with Aaron. Chat, tunes and travel updates that may or may not be accurate. Join me Mondays 4 to 6 only on a WAZ FM 99.8 FM.
2: जी हाँ, ये है आवाज़ FM, मैं उसी मसरगम और हमारा प्रोग्राम बेशक ये है आवाज़ खैरियों की क्लब। आप सुनते हैं हमें हर संडे 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक। और अभी एक गीत आपने सुना, दिल में मेरे जो समा गई, बहुत ही खूबसूरत सा गीत था दिनेश वेग की आवाज़ में। तो अब हम दावत देते हैं कमलेश बैरी को, जो कि दिल्ली में रहती हैं और उनका गीत है बहुत ही प्यारा क्लासिक गीत, यूं हसरतों के दाग मोहब्बत ने धो लिए।

दोस्तों, मैं हूं सीमा सरगम। मेरा प्रोग्राम आवाज खैरियों की क्लब सुनना न भूलिए, जो कि हर संडे शाम 6 बजे से 8 बजे तक आवाज FM पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इस प्रोग्राम में आप ही की आवाज में गाए हुए खैरियों की गीत पेश किए जाते हैं। अपने गीत भेजने के लिए व्हाट्सएप का ये नंबर जरूर नोट कर लें। नंबर है 07784691440। रिमेम्बर, आवाज खैरियों की क्लब एवरी संडे 6 to 8 PM। जी हाँ, यह है आवाज FM और हमारा प्रोग्राम है आवाज कैरियोकी क्लब, और मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सीमा सरगम। हमेशा ही आप ही के गाए हुए गीतों को इस प्रोग्राम में शामिल करती हूँ और आपकी खिदमत में पेश करती हूँ हर संडे 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक। और इसके अलावा आप रिपीट प्रोग्राम सुनते हैं वेनसडे मॉर्निंग, UK टाइम होता है 8 AM। तो इसके अलावा आप लिसन बैक कर सकते हैं। जी हाँ, ये सब सहूलतें आपके लिए मौजूद हैं, तो आप ज़रूर इस प्रोग्राम को सुनते रहें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बताते रहिए। अभी जो आवाज़ आपने सुनी कमलेश बैरी की थी, ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। और अब हम दावा देते हैं मदन परदेसी को, जो कि हैदराबाद के रहने वाले हैं। दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, इंजॉय कीजिएगा।

0: आवाज करियोकी क्लब अब हर बुधवार को सुबह 8 से 10 बजे तक रिपीट किया जाता है। जो इस प्रोग्राम को सुनने वाले साउथ एशिया यानी इंडिया और पाकिस्तान में रहते हैं, वो अब दिन के दौरान आवाज करियोकी क्लब सुनकर इसका लुत्फ ले सकते हैं। तो याद रखिए, अब आवाज करियोकी क्लब हर बुधवार को सुबह 8 बजे यूके टाइम के मुताबिक रिपीट किया जाता है।
1: जी हाँ, ये है आवाज FM और मैं हूँ सीमा सरगम, और ये प्रोग्राम जो आप सुनते हैं आवाज करियोकी क्लब, हर संडे होता है 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक। आप ही के गाए हुए गीतों का ये प्रोग्राम है और दुनिया भर तक आप ये प्रोग्राम सुनते हैं आवाज FM की वजह से, जो कि 99.8 FM साउथहैम्पटन से पेश किया जाता है। आप अपने इंटरनेट पे, अपने स्मार्टफोन पे सुनते हैं, दुनिया भर में लिसन बैक करते हैं, रिपीट प्रोग्राम सुनते हैं। अभी जो गीत आपने सुना मदन परदेसी की आवाज़ में था, ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद। तो अब सुनिए अखिल सक्सेना की आवाज़ में एक गीत, जो कि लखनवाला के मुंबई से रहने वाले हैं, और उनका गीत है मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा। ये प्यारा सा गीत, इंजॉय कीजिए।

0: This is your host from Norfolk, Alex Aller, on a Waz Drive Time. Listen to me at 4 to 6 on Fridays, 99.8 FM. Turn it up and lock it in. Happy Friday on a Waz, 99.8 FM. Call me on our landline, 02381 9800 72. Finish your Friday with me, Alex.
1: जी हाँ, ये है आवाज़ एफ एम. मैं हूँ सीमा सरगम और अभी जो गीत आप सुन रहे थे, ये थे आखिर सक्सेना ऑल द वे फ्रॉम लोखंडवाला मुंबई. तो अब हम दावत देने जा रहे हैं बिना मुजारिया को, जो कि हैरो यानी लंदन की रहने वाली हैं, और बहुत ही खूबसूरत सा गीत उन्होंने हमें भेजा है, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम. तो ये प्यारा सा गीत हम मिलके इंजॉय करते हैं.

0: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए। आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
1: जी हाँ, ये है आवाज़ एफएम और मैं हूँ सीमा सरगम। हमारा प्रोग्राम आवाज़ कैरियोकी क्लब आप ही के गाए हुए गीतों का ये प्रोग्राम हर संडे आप सुनते हैं 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक। और अभी जो प्यारा सा नगमा आपने सुना ये थे नारा सिंह रावल द वे फ्रॉम सिकंदराबाद। अब सुनते हैं संतोष मुरागे को जो कि शहादा महाराष्ट्र से हैं और उनका गीत है पहली बार मिले हैं। इंजॉय कीजिए।

0: How do you say it? A was or a was?
1: बेशक ये है आवाज़ FM और हमारा नंबर है 07784691440। इस पे आप अपने गीत हम तक पहुंचा सकते हैं ताकि हम अपने प्रोग्राम जो कि है आवाज़ करियोकी क्लब में शामिल कर सकें, अगर वो अच्छे स्टैंडर्ड में हुए तो। तो जो गीत अभी आपने सुना बहुत ही खूबसूरत सा गीत था, पहली बार मिले हैं, ये थे संतोष मुरंगे ऑल द वे फ्रॉम शहादा महाराष्ट्र से। तो चलिए गीत सुनते हैं अब अशोक तकवानी जी की आवाज़ में, चेन्नई के रहने वाले हैं और उनका गीत है ये आँखें उफ यू माँ।

0: I'm John Denham. You're listening to Hours FM.
1: Southampton's community radio, Hours FM.
2: बेशक ये है आवाज़ FM, आप हमें सुन रहे हैं 99.8 FM साउथहैम्पटन से। मैं हूँ सीमा सरगम, आपकी अपनी होस्ट, और ये प्रोग्राम है आवाज़ करियोकी क्लब। जी हाँ, आपके गाए हुए गीतों का प्रोग्राम हर संडे 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे UK टाइम के मुताबिक। तो जो गीत अभी आपने सुना, ये आंखें ऑफ़ यू माँ, ये थे अशोक तकवानी जी ऑल द वे फ्रॉम चेन्नई। तो अब हम सुनते हैं शोभा शास्त्री को, जो कि सूरत गुजरात के रहने वाली हैं, और क्या खूबसूरत गीत उन्होंने चूज़ किया है, जाना था हमसे दूर बहाने बना लिए।

0: To listen back to shows on Awaaz FM, simply go to our podcast page on the website at www.awaazfm.co.uk/podcast. You can download any show and listen to it again. These will stay on the website for 14 days. Alternatively, listeners can call the studio on 02381 980072 and press option 4, and you can record your dedication or request. We will then download your voice message, edit it, and then add the requested song and play out during our overnight service.
1: जी हाँ, ये है आवाज़ FM और मैं हूँ सीमा सरगम. आप ही का प्रोग्राम है आवाज़ कैरियोकी क्लब, जिसमें अभी आपने सुना शुभा शास्त्री की आवाज़. सूरत गुजरात से उनका ये गीत हम तक पहुँचा था. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. चंद्र सदारंगनी को इनवाइट करते हैं ऑल द वे फ्रॉम बली सेंट्रल अमेरिका. और गीत भी क्या खूब है, ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, बहुत ही खूबसूरत है. इन्जॉय कीजिए.

0: This is Natalie DeLuccio, and keep listening to Awaz FM.
1: जी हाँ, ये है आवाज़ FM, मैं हूँ सीमा सरगम और हमारा प्रोग्राम ऑफ़ कोर्स आवाज़ कैरियोकी क्लब, और इसमें आप ही के गाए हुए गीत हम शामिल करते हैं। और ये नंबर मैं आपके लिए दोहरा देती हूँ ताकि अगर कोई और भी इसको इस्तेमाल करना चाहे ज़रूर हम तक अपने गीत पहुँचाए ऑन MP3 रिकॉर्ड करके। तो ये नंबर है UK का, व्हाट्सएप का नंबर 07784691440। अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा नगमा सुना चंद्र सदा रंगनी की आवाज़ में, ऑल द वे फ्रॉम बलीज सेंट्रल अमेरिका। तो चलिए आप सुनते हैं अमृत बधेर की आवाज़ में एक खूबसूरत सा नगमा जो कि लंदन से हमें आया है, और ये गीत है सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। इंजॉय कीजिएगा।

0: 24 hours a day, Hours FM, online and on air.
1: जी हाँ, ये है आवाज़ FM, मैं हूँ सीमा सरगम। हमारा प्रोग्राम आवाज़ कैरियोकी क्लब, आप हमें सुनते हैं 99.8 FM साउथहैम्पटन से, और दुनिया भर में आप इंटरनेट पे अपने स्मार्टफोन पे सुनते हैं, लिसन बैक करते हैं। इसके अलावा आपको रिपीट प्रोग्राम दिया जाता है। तो इसी तरह बने रहिए, भेजते रहिए अपने गीत 07784691440। तो अभी जो आपने प्यारा सा गीत सुना, जी हाँ, ये बेशक ये थे अमृत वदेर, और ये लंदन से हैं, और मैंने इन्हें बहुत दफ़ा लाइव भी सुना है। बहुत ही खूबसूरत गाते हैं, समा बांध देते हैं। अब मेरा भी जी चाह रहा है आपकी नज़र कुछ करूं, और मैं हूँ सीमा सरगम ऑल द वे फ्रॉम सलाह, और गीत आपके लिए लाई हूँ, अभी ढूंढ ही रही थी। आई होप यू विल ऑल इन्जॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

0: From Wolston to West End, from Milnbrook to Marchwood, this is Hours FM.
1: जी हाँ, ये है आवाज़ FM. मैं हूँ सीमा सरगम और हमारा प्रोग्राम आवाज़ कैरियोकी क्लब. आप हमें सुनते हैं 99.8 FM साउथहैम्पटन से. अगर आप हैं साउथहैम्पशायर, विंचेस्टर या पोर्टसमथ के इलाकों में तो DAB पे भी आप हमें सुन पा रहे हैं. अच्छी तरह बने रहिए हमारे साथ और अपने गीत हम तक पहुँचाते रहिए 1077-8469-1440 पे. अभी जो गीत आपने सुना, जी हाँ, ये मेरी आवाज़ में था. उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. मधु समिता और उनके साथ हैं दिनेश वेग, ऑल द वे फ्रॉम मुंबई, और उनका गीत है गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर. इंजॉय कीजिएगा.
2: गोरे रंग पे ना इतना

0: Hello friends, my name is Rahi Baines and I've come to remind you to listen to my radio show Kinare Kinare every Tuesday between 11 a.m. and 1 p.m. As usual, there is loads of music, masti and manoranjan for you. The program includes chutkle, funny poems and skits, Bollywood biographies, birthday bash whereby I mention the names of all my Facebook friends who had their birthdays in the last 7 days, Zara Hatke, which is off the beaten track pieces of musical items, and a lot more. So see you next Tuesday between 11 a.m. and 1 p.m. here on Awaaz FM.
1: जी हाँ, ये है आवाज़ FM और मैं हूँ सीमा सरगम। और अभी आपने बहुत प्यारा सा गीत सुना मधुस्मिता जी की आवाज़ में, जो कि दनेश्वर के साथ गा रही थी मुंबई से। तो ये गीत था गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर। तो अब हम दावत देते हैं रॉही बेंस को, जो कि पोर्समथ के रहने वाले हैं और बेशक इस प्रोग्राम को यानी आवाज़ कैरियोकी क्लब को तरतीब देते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन करते हैं। तो जी हाँ, उसके लिए हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। तो उनका गीत है जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, उस दिल को कभी का तोड़ दिया, क्या बात है।

0: Southampton's Community Radio, Ours FM.
1: जी हाँ, ये है आवाज़ एफएम। मैं हूँ सीमा सरगम, आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त। हमारा प्रोग्राम आवाज़ करियोकी क्लब, जी हाँ, आपके भेजे हुए गीतों का ये प्रोग्राम होता है हर संडे 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक। और अभी आपने जो प्यारा सा गीत सुना, ये थे रविंद्र यारे ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो कनाडा। तो अब हम सुनने जा रहे हैं सुब्रतो मित्रा जी को, जो कि कोलकाता के रहने वाले हैं और बहुत ही खूबसूरत गाते हैं। उनका गीत है कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। इंजॉय कीजिएगा।

0: From the flight path at Southampton Airport to the ocean terminal at Southampton Docks, you're listening to Hours FM.
1: बेशक ये है आवाज़ FM और मैं हूँ सीमा सरगम. हमारा प्रोग्राम आप जानते ही हैं, जी हाँ, आप ही के गाए हुए गीतों का ये शो होता है और हर संडे होता है 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे यूके टाइम के मुताबिक. लेकिन आप तो सुनते हैं दुनिया भर में इंटरनेट पे, अपने स्मार्टफोन पे आप लिसन बैक भी कर सकते हैं. और इसके अलावा वेनसडे 8 AM का प्रोग्राम जो है वो आप अपने मुल्कों में भी सुन सकते हैं अपने मुल्कों के टाइम के मुताबिक. तो जो बहुत ही खूबसूरत सा नगमा आपने सुना ये थे सुब्रतो मित्रा जी ऑल द वे फ्रॉम कोलकाता, एंड वी आर सो प्लीज टू हैव सच ब्यूटीफुल सिंगर्स इन आर ग्रुप. तो आगे बढ़ते हैं और ये निचादर सिंह हैं ऑल द वे फ्रॉम चंडीगढ़, और उनका गीत है हुई शाम उनका ख्याल आ गया. बहुत ही खूबसूरत सा नगमा है, इन्जॉय कीजिए.

0: You're listening to Awaaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaaz is here. Awaaz FM on 99.8.
1: बेशक ये है आवाज़ FM, मैं हुसैमा सरगम। हमारा प्रोग्राम आवाज़ कैरियो की क्लब, आप हमें सुन रहे हैं 99.8 FM साउथहैम्पटन से, दुनिया भर में इंटरनेट पर, अपने स्मार्टफोन पे आप हमें सुनते हैं। अभी जो आवाज़ आपने सुनी थी ये नचादर सिंह ऑल द वे फ्रॉम चंडीगढ़ यानी इंडिया से थे। और अब आगे बढ़ते हैं, राजेश काकवानी जी को हम दावत देते हैं। अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले हैं और उनका गीत है हम बेवफा हरगिज़ न थे। इंजॉय कीजिएगा।

0: I'm John Denham. You're listening to Hours FM,
1: Southampton's community radio. Hours FM.
2: जी हाँ, ये है आवाज़ FM. मैं हूँ सीमा सरगम और हमारा प्रोग्राम है आवाज़ करियोकी क्लब, जिसमें आपके गाए हुए गीत हम शामिल करते हैं, दुनिया भर तक आपकी आवाज़ पहुँचाते हैं. और आवाज़ कैसे पहुँचाते हैं आप? हमें अपने गीत पहुँचाते हैं, जी हाँ, MP3 पे रिकॉर्ड करके, और राहिबेंस आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं. तो ये नंबर है 07784691440, जिस पे आप अपने गीत हम तक पहुंचा सकते हैं और MP3 पे होने चाहिए. तो अभी जो गीत आपने सुना वो भी बहुत खूबसूरत था, राजेश काकवानी जी की आवाज़ में था, ऑल द वे फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात. तो इसी तरह अब आगे बढ़ते हैं और वेंकटा रमनागिरी की आवाज़ में एक गीत सुनते हैं, जो कि काकीनाडा आंध्र प्रदेश से है, और ये गीत है वो शाम कुछ अजीब थी. तो ये प्यारी सी शाम हम मिलके इकट्ठी गुजार ही रहे हैं, तो चलिए इस प्यारे से गीत को भी सुनते हैं.
3: ओ शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी

0: Hop on, rewind, repeat. One wild ride. Retro Rickshaw, every Sunday between 2 and 4 p.m.
1: जी हाँ, ये है आवाज़ FM और आप हमें सुन रहे हैं 99.8 FM साउथहैम्पटन से, लेकिन दुनिया भर में तो आप हमें सुनते हैं इंटरनेट पे, अपने स्मार्टफोन पे, अपने ही मुल्कों के टाइम के मुताबिक आप हमें सुन पाते हैं। तो लिसन बैक ज़रूर कीजिए ताकि ये प्रोग्राम मिस ना हो जाए। और इसके अलावा रिपीट होता है ये प्रोग्राम हर वेडनेसडे को, बुधवार ये प्रोग्राम होता है 8 बजे सुबह UK टाइम के मुताबिक। जी हाँ, आपके अपने मुल्कों के टाइम के मुताबिक आप ये प्रोग्राम भी सुन सकते हैं, लेकिन हम आपके लिए जितनी भी सहूलत पेश कर सकते हैं वो करते हैं। तो जो गीत अभी आपने सुना वेंकटा रमना गेरी की आवाज़ में था, ऑल द वे फ्रॉम काकीनाडा आंध्र प्रदेश। और अभी मैं घड़ी की तरफ देख रही हूँ तो हमारे जाने का वक्त भी हुआ जा रहा है, लेकिन इस प्रॉमिस के साथ कि नेक्स्ट वीक फिर से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगी। आप अपने गीत हम तक पहुँचाते रहिए 07784691440। तो जाते जाते आपकी नज़र करती हूँ बहुत ही खूबसूरत सा नगमा मदन परदेसी की आवाज़ में फ्रॉम हैदराबाद। हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। मेरी तरफ से गुड बाय एंड रब रखा।

0: You're listening to Awaaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
1: एक पल की लापरवाही।
2: अंकल, मुझे तो बड़ी हो के एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry-expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
3: Ek pal ki laparwahi. आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
4: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए। आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर, और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज, आवाज एफएम के साथ।
5: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.

0: इस प्रोग्राम को जरूर सुनिए और बरकत पाइए।
1: साउथैम्पटन एक खूबसूरत तारीखी शहर, समंदर की नीली लहरों के किनारे ये आबाद शहर अपने अंदर कितने राज छुपाए हुए हैं। मेरी जवानी का शहर जिसकी गोद में मैंने कितने सुनहरे दिन गुजारे हैं, मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। इसी शहर के दिल के अंदर हमारा एक कम्युनिटी रेडियो आवाज़ ने जन्म लिया है और इसके अंदर भी कितनी आवाज़ें पोशीदा हैं, उनमें एक प्रोग्राम शेर व नगमा भी है। ज़िंदगी के दो बड़े साथी हमारा शेर व नगमा हर जुमेरात को दिन के 2 बजे शुरू होता है। मेरा नाम मकबूल अहमद सईद है और मेरे बादशाह आसिफ अली साहब मेरे नगमागर मेरे साथ होंगे। हमारे दरबार के दरवाज़े सब के लिए खुले हैं, ज़रूर उसमें शामिल हों, वक्त किसी का दोस्त नहीं। ये सांसों की जादूगरी न जाने कब थम जाए, वक्त के साथ चलें, वक्त की तज़ीम करें। आखिर में 2 शेर, जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर था यह खुशबू, जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर था यह खुशबू, ये वो हंसता रोगी जाने जिसने ज़ख्म छुपाए हैं। शम्मे बज़्मे तरब बुझ जाए फिर अपने भी पराए हैं, दिन डूबे तो छुप जाते हैं, साए आखिर साए हैं।

जी फिल्म बाला गड्डी में जनाब सन पट्टी और गाने से भेजी आने से जी तेरा हुसन नहीं सजना यार बिना या फिर होना नहीं गुजारा प्यार बिना। हुन तुसां कि अगला सुनाने जी एक सैफ मलूक ना कलाम। सैफ मलूक ने कलाम तो बहुत सारे जी बहुत सारे साथियों संगियों ने गाया। अज जिहड़े गुलाकार तुसाने खिदमत में आना पिया इन्हां दा नां है जी मसरत नाज। ते इन्हां दी आवाज़ सुनने पे जी आने जी मिठा मेवा बेरी देवे और फिर भी वट्टे खावे।

0: ओढ़नी पंजाबी तिलेदार ओए लेते सैया ओढ़नी। चलू लचक लचक के
1: आहे,
0: सारा मटक मटक के
1: आहे,
0: लट

चाहे बिक जाए पगड़ी मेरी चाहे बिक जाए हल, ले दूंगा तू जो मांगे एक बार ठुमक के चल। जरा लचक लचक के, जरा मटक मटक के, लट

जी सलमान गाने से भेजी आने जी की दसा वे हाल मेरा है गवाह। उम्मीद करना सके गाना चंगा लग सी जी लगा उसी जरूर। पहली दफा हमारे इस प्रोग्राम में इस गाने की पेश किया गया। अगला गाना सुनी फिल्म दसना पिया नूर जहां मलका तरनम गानियां पिया जी फिल्म ना दरंदगी ते तुसा सुनने पेशले रेडियो आवाज FM साउथम्पटन में अहमद साई गाने ने बोला जी कल मेरी गलियां दे फेरे पाएगा।

जी तुस हुन सुनी जी आवाजां दो त्रै, जैसी जसबीर जैसी ते सोनिया शर्मा, आकाश सिंह होर निवासी जी फिल्म सी स्वीटी वेड्स NRI ते कुड़ी गुजरात दी इसना टाइटल सा। हुन तुसां गी जेह्ड़ा अगला गाना मैं सुनान लगा, फिल्मा दा नां आ लावारिस ते मलका इतरनम नूर जहां होर आवाजी ते आखने जी जदों तक तेरा मेरा साह नहीं मुकदा, अल्लाह दी सो दुनिया तो प्यार नहीं मुकदा।

नूर जहां ते महनाज बेगम की मुड़सों की अगला गाना सुनाना पिया ये गैर फिल्मी आ आसिफ मीर और गाने पे जी आने जी गड्डी माड़े राजे नी पिंडी रूट पे चलनी है जी।

जी गड्डी माड़े राजे नी पिंडी रूट पे चलनी है जी। सुनिया तुसा ए आसिफ मीर होरां दी आवाज विच। ते हुण तुसा गी अगला गाना सुनाना फिल्मी गाना जी, फिल्म दा नाम लच्छी, नसीम बेगम ते मसूद राणा होरां दी आवाज जी। आखणे जी डरदे हो हामी भर ली, प्यार तेरे दी हामी भर ली।

0: साउथैम्पटन एक खूबसूरत तारीखी शहर, समंदर की नीली लहरों के किनारे यह आबाद शहर अपने अंदर कितने राज छुपाए हुए हैं। मेरी जवानी का शहर, जिसकी गोद में मैंने कितने सुनहरे दिन गुजारे हैं, मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। इसी शहर के दिल के अंदर हमारा एक कम्युनिटी रेडियो आवाज़ ने जन्म लिया है और इसके अंदर भी कितनी आवाज़ें पोशीदा हैं, उनमें एक प्रोग्राम शेर नगमा भी है। ज़िंदगी के दो बड़े साथी, हमारा शेर नगमा हर जुमा रात को दिन के 2 बजे शुरू होता है। मेरा नाम मकबूल अहमद सईद है और मेरे बादशाह आसिफ अली साहब मेरे नगमागर मेरे साथ होंगे। हमारे दरबार के दरवाज़े सब के लिए खुले हैं, ज़रूर इसमें शामिल हों, वक्त किसी का दोस्त नहीं। ये सांसों की जादूगरी न जाने कब थम जाए, वक्त के साथ चलें, वक्त की तज़ीम करें। आखिर में दो शेर, जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर्द था यह खुशबू, जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर्द था यह खुशबू, ये वो हंसता रोगी जाने जिसने ज़ख्म छुपाए हैं। शम्मे बज़्म में तरब बुझ जाए फिर अपने भी पराए हैं, दिन डूबे तो छुप जाते हैं, साए आखिर साए हैं।
1: Every Saturday at 5, it's the Winchester Talking Newspaper on Hours FM.
2: दोस्तों, मैं हूं सीमा सरगम। मेरा प्रोग्राम आवाज खैरियों की क्लब सुनना न भूलिए, जो कि हर संडे शाम 6 बजे से 8 बजे तक आवाज FM पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इस प्रोग्राम में आप ही की आवाज में गाए हुए खैरियों की गीत पेश किए जाते हैं। अपने गीत भेजने के लिए व्हाट्सएप का ये नंबर जरूर नोट कर लें, नंबर है 07784691440। रिमेम्बर, आवाज खैरियों की क्लब एवरी संडे 6 to 8 PM।
3: दिस इज योर होस्ट फ्रॉम नॉर्फोक, एलेक्स एलो, ऑन अ वाज ड्राइव टाइम। लिसन टू मी एट 4 to 6 ऑन फ्राइडेज 99.8 FM। टर्न इट अप एंड लॉक इट इन। हैप्पी फ्राइडे ऑन अ वाज 99.8 FM। कॉल मी ऑन आवर लैंडलाइन 02381 9800 72।
4: फिनिश योर फ्राइडे विद मी।
5: Hop on, the Retro Rickshaw is here and is taking you on a ride to the greatest hits of all time. 90s Bollywood bangers by Bombay Vikings and Kumar Sanu. Soulful Kannada melodies, classic Marathi tracks and the freshest Indian remixes. All in one wire.

0: You're listening to Awaaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
1: एक पल की लापरवाही।
2: अंकल, मुझे तो बड़ी ओके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी ओके डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

होकर आया हूँ इंसानों की गलियों से, इंसानियत ना मिली इंसान ना मिला, इबादत के नाम के झंडे तो मिले, इबादत ना मिली भगवान ना मिला।

0: You're listening to Awaaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
1: एक पल की लापरवाही।
2: अंकल, मुझे तो बड़ी ओके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी ओके डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: दोस्तों, मैं हूं सीमा सरगम। मेरा प्रोग्राम आवाज कैरियोकी क्लब सुनना ना भूलिए, जो कि हर संडे शाम 6 बजे से 8 बजे तक आवाज FM पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इस प्रोग्राम में आप ही की आवाज में गाए हुए कैरियोकी गीत पेश किए जाते हैं। अपने गीत भेजने के लिए व्हाट्सएप का ये नंबर जरूर नोट कर ले। नंबर है 07784691440। रिमेम्बर, आवाज कैरियोकी क्लब एवरी संडे 6 to 8 PM।
1: लाइट हाउस इंटरनेशनल चर्च की जानिब से
2: हफ्तावार मसीही प्रोग्राम नूरे खुदा,
3: हर जुमेरात सुबह 8 से 9 बजे
4: नूरे खुदा,
5: हर वीरवार सवेरे 8 to 9 बजे तक
6: नूरे खुदा।
1: आवाज रेडियो 99.8 FM पर
7: नूरे खुदा।
8: इस प्रोग्राम में आप सुनते हैं मसीही गीत और गजलें, मसीही शायरी और कलाम मुकद्दस की मीठी मीठी बातें।

वेलकम ब्याक सुने दिल अपना पन्जाबी साउनी अन वाज एफएम 99.8 सारा सुरु न भएगा 83 8198 0070 दैट्स 83 8198 0070 नले सारा व्हाट्सएप न भएगा 0784 691 440 दैट्स 0784 691 440 आज उसी गाल का मैं फनी सुपरस्टिशन नेक्स्ट वन हैगा विसलिंग इंडोर्स हाँ जी केंद्र या सीटी अंदर बजानी बनानी बजानी नहीं चाहिए क्योंकि ये इनवाइट ईवल हो जाने तो ईवल नू अंदर अपने घर में बुला सकते हैं ये नहीं मैं पता किदा पर अपेरेंटली दा हो जाता है सादे भी है इंडिया में भी सुपरस्टिशन जेरे कभी कभी सेंस नहीं मेक आते चलो पसते होंगे तुम इदा घट है वगैर उन्होंने भी नहीं पता होंगे क्योंकि वह कहना इदा ही सी काफ़ी देर इदा ही सी सानू भी नहीं पता फिर हुई मैं कभी भी नहीं मिले किसी को जरा उन्होंने पता हों सुपरस्टिशन कहते हैं किसी ने नहीं पता यही करके मैं फिर मैंने मैं समझ नहीं लगती होंगी किन्ने बनाया सुपरस्टिशन पहला किन्ने नाले लॉजिक ही बिहाइंड ये याद रखो गाइस सारा स्टूडियो नाम है 0384 8198 0070 दैट्स 0384 8198 0070 ना सर व्हाट्सएप नंबर है 0784 691 440 दैट्स 0784 691 440 एंड गाइस प्लीज याद रखो माय स्टूडियो मेरा फेसबुक पेज भी facebook.com/mypunjabiso अगला ना गाना मैं तेरे वास्ते प्ले करना वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स है गया गुड आसमान ये गाना है गया अपना पंजाब होवे होप यू गाइस एंजॉय हियर वी गो

वेलकम ब्याक सुन्ने दिल अपना पन्जाबी सौनी एन आवाज एफ एम 99.8 सारा स्टूडियो नंबर है 83 8198 0072 नारे सारा व्हाट्सएप नंबर है 0784 691 440 एंड गाइस प्लीज मेरा फेसबुक पेज लाइक करो facebook.com/mypunjabiso दैट्स facebook.com/mypunjabiso आज ऑब्वियसली मैं गल करदा फनी सुपरस्टिशंस नेक्स्ट वन हैगा ए आइसलैंड तो कहने निथिंग बार दे तुसी नीड करोगे सर्दी ज़्यादा हुंदी आ ज़्यादा देर होगी सर्दी ए गल सर्दी कौन लाइक करदा मैं नहीं लाइक करदा विंटर मैं समर लाइक करदा क्योंकि कोट इन्ने पाने पैंदे आ फिर टोर हुंदा नहीं सही तरह नाले ठंड बहुत हुंदी आ अजकल टेंपरेचर भी हम काफ़ी है लोग कई कहने होंगे ओके मैं स्नो लाइक करता स्नो फाइट कर सकते हैं स्नो मैं बिल्ड कर सकते फिर आ जाती आना कहने डी वन बिल्ड स्नो मैन मैं नहीं बिल्ड करना मैं स्नो मैन ठंड इन्नी होंगी नाले आइसी काफ़ी होंगे उदा ये गल मैं याद है लास्ट टाइम भी होया सी स्नो उदा मार्च में हुई सी आप भी कहने आप सोचे कमाल आ हूँ तो थोड़ी जी वेदर ठीक हो जाती वॉर्म अप हो जाती पर ना स्नो होंगी मैंने नहीं लगता आ साल स्नो पेगी पर की पता चेंज भी हो सकता कुछ भी हो सकता 2020 इन्नी काफ़ी सी इतने कुछ भी हो सकता साल में हूँ ये मैं 100% गारंटी नहीं कह सकता आ साल स्नो पेगी पर सैड पेगी पता नहीं लोग कहते सैड पेगी पर मैं यही चाहता ना पवे यही आ मैं नहीं लाइक करता स्नो याद रखो गाइस सारा स्टूडियो नंबर है 83 8198 0072 that's 83 8198 0072 नाले सारा व्हाट्सएप नंबर है 0784 691 0074 अगला गाना महानता वजली वजे हाँ जी ये काफ़ी अमेजिंग गाना है हबी गाइस एंजॉय हियर वी गो

0: You're listening to Awaaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
1: एक पल की लापरवाही।
2: अंकल, मुझे तो बड़ी हो के एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था। मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था। मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry-expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
3: Just because I'm a driver doesn't mean I can see you.
4: Just because you're at the speed limit doesn't mean you're not dangerous.
5: Just because you're in a rush doesn't mean you can ignore the crossing.
6: Just because you're driving doesn't take away my right of way.
7: Just because it seems clear doesn't mean you shouldn't stop.
8: Just because you're surrounded by metal doesn't mean I'm not flesh and blood.
9: Just because you're nearly home doesn't mean you are.
10: One in every five road deaths is a pedestrian. Just because you use the road doesn't mean you own it. Respect everyone's journey.
11: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
12: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. Awaz FM on 99.8.
13: हेलो जी, मेरा नाम है सनी। मैं होस्ट करता दिल अपना पंजाबी शो हर वीरवार 6 बजे तो 8 बजे तक लेके सिर्फ आवाज FM 99.8 पे। वेलकम बैक, किसी सुने दिल अपना पंजाबी सा ऑन आवाज एफएम 99.8 ते सारा स्टूडियो नंबर 0238198007। दैट्स 0238198007। नाले सारा व्हाट्सएप नंबर है 0784691440। अब जैसे मैं कल करना फनी सुपरस्टिशंस, नेक्स्ट वन है गा यार नूला सारे नाला पता ट्यूजडे तुसी बाल नहीं कटाने। हाँ जी, एक गल मैं समझ लग जरा भी तुम कहोगे मैं बाल कटा जाना जो ट्यूजडे होंगे केंद्र होंगे पेरेंट्स नहीं तू कटा नहीं सकता बाल काते जो तुम पुछे तो कहते क्योंकि आज ट्यूजडे आ। एक गल मैनू बाल कटन का तो ट्यूजडे का कनैक्शन की आ हाले भी मैनू किसी ने लॉजिकल आंसर दिता नहीं है आ काते नहीं कट सकते क्योंकि मेरा ट्यूजडे दिन नहीं होंगे आ। यही मैं सोच मैं क्या की कनैक्शन आ जो मैं कटा कत्त ले बाल होना की आ ये मैनू हाले भी पता नहीं लगता क्योंकि हर वक्त जो मैं कटना हों बाल ट्यूजडे कट नहीं सकता हाले मैं पता नहीं लगा कहते ने बाल रखेगा या किसी ने मैनू लॉजिकल आंसर नहीं दिता हाले भी मैं सोच रहा कहते हैं या पर पता नहीं कद मैं मैनू कभी नहीं पता लगेगा खाते नहीं कर सक रहे यार। गाइस सारा स्टूडियो नंबर है 0238198007। दैट्स 0238198007। नाले सारा व्हाट्सएप नंबर है 0784691440। दैट्स 0784691440। अगला गाना मैं तेरे पास प्ले करूँगा एम्पलीफायर बाय इमरान खान। होप यू गाइस एंजॉय। हियर वी गो।

Welcome back to season de Dilla Pana Punjabi sa Oniana Waz FM 99.8 de Sada Studium Hega 0381980072. That's 0381980072. Now let's have a WhatsApp number Hega 0784691440. That's 0784691440. आज उसी मैं गला करना फनी सुपरस्टिशंस नेक्स्ट सुना है गा हाँ जी तुझे लैडर ठल्ले वोक नहीं कर सकते क्योंकि एक एंड है मेडिवल सी वो तो नहीं कर दे सी काफ़ी बैड है गा बैड लग हाले भी लोग ही है गे या जो भी देख रहे हैं लैडर है गा वो ठल्ले नहीं वोक कर दे द स्कैफोल्डिंग दे ठल्ले नहीं वोक कर दे पता नहीं कर दे सारे हम ब्रेन में हो गया या एरे ठल्ले नहीं तोड़ना क्योंकि बैड लक होंदा है पर मैं कुछ होंदा नहीं कही एक ने ट्राई किया काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया उन्हें सब कुछ किया गलत मीनिंग उन्हें शीशा तोड़िया या लैडर हले वो ट्रिटा फिर भी उन्हें बैट किया मैनू मेरे को पैसे विन होने फिर उन्हें डार्ट छिड़के दिया ब्लाइंड फोल्ड किया डार्ट मारिया नाल उन्हें उही पैसे मिले उन्हें देखा नहीं कितने पर उन्हें 100 पाउंड वो विन होगी अमेजिंग सी एक्सपेरिमेंट सी पहले वो कादी नहीं होंगी सी बस कहने कमाल है यार ये किदा ये आ कमाल आता लोग फिर भी उन्होंने पता हों कोई बैड लक नहीं है पर कहने कमाल है यार ये किदा ये आ कमाल आता लोग फिर भी उन्होंने पता हों

0: अपना टाइम आएगा।
1: वेलकम बैक, दिस इज ऑन द दिल अपना पंजाबी सा ऑन योर नाउ वाज एफएम 99.8 डे सारा स्टूडियो नंबर है 83 8198 0072। That's 83 8198 0072। नाले साडा व्हाट्सएप नंबर हैगा 0784 6914 0072।
2: Was or a was? This is Hours FM online and on digital DAB radio from Southampton.
1: Welcome back. This is the Lapna Punjab is on in Hours FM 99.8. Sada studio number 0238198 0072. That's 0238198 0072. Now it's at a WhatsApp number 0784 691 0040. That's 0784 691 0040. Obviously, आज गल कल मैं funny superstitions. Next one हैगा यार एक काफ़ी 40 सौ हैगा ये मैंने बहुत फनी लगा। ये कहते हैं तुसी कभी भी अपने फ्रेंड जैसा हम गल करते हैं दोनों सेम टाइम में तुसी एक चीज़ नहीं कह सकते। ये लिखा इतने वह मैंने याद आप कहने बैड लक हों और एक फनी सा जरा बस सोचते होंगे सी जो कोई भी सेम चीज़ सेम टाइम साढ़े अगर कहते होंगे सी आप कह रहे होंगे सू जिंक्स पैडलॉक फिर उन्होंने चुप रहना पैंता जब तक कोई उन्होंने नाम नहीं ले सकते। फिर कभी कभी जब तक कहना ओके नाम ले दूंगा तेरा बाद चो फिर टाइप करते रहते सानू नाम लै की गल होया आप चुप करके आप नठ जाओ फिर चुप करके चुप बैठा रहता है क्योंकि किसी ने वो नाम नहीं गया। फनी बहुत होंगे उन्होंने गुस्सा चढ़ता रहता है क्योंकि तुझे नाम नहीं बोलते असी हसते रहते क्योंकि सानू फनी बहुत लगता है और काफ़ी प्रैंक बहुत खेलते होंगे सी छोटे होंगे क्योंकि फनी बहुत लगता से गेम दी होंगी सब खेलते होंगे सी। याद रखो गाज सारा स्टूडियो नंबर है 83 8198 0072। That's 83 8198 0072। नारे साडा व्हाट्सएप नंबर है 0784 6914 0040। अगला गाना मैं थोड़े वास्ते प्ले करांगा है छइयां छइयां। हैप्पी गाइज एंजॉय। हियर वी गो।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: लाइफ को अटकना नहीं आता, तो फिर हम और आप क्यों रुकें? इस तेजी से दौड़ती जिंदगी का साथ दो, जिंदगी चले बिना रुके।

0: Hi, this is Anna Salman, and you're tuned into Awaaz FM. You can follow me on Instagram at Anna Salman Dar.
1: एक पल की लापरवाही.
2: अंकल, मुझे तो बड़ी ओके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था. मुझे बड़ी ओके डॉक्टर बनना था. मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: Just because I'm a driver doesn't mean I can see you.
4: Just because you're at the speed limit doesn't mean you're not dangerous.
5: Just because you're in a rush doesn't mean you can ignore the crossing.
6: Just because you're driving doesn't take away my right of way.
7: Just because it seems clear doesn't mean you shouldn't stop.
8: Just because you're surrounded by metal doesn't mean I'm not flesh and blood.
9: Just because you're nearly home doesn't mean you are.
10: One in every five road deaths is a pedestrian. Just because you use the road doesn't mean you own it. Respect everyone's journey.
11: Hours FM 99.8. Hours FM.

0: We even left a bit of paper. It's that taskmaster, Ali, the station manager, cracking the whip, saying it can't just be you two talking nonsense all week.
1: That's right, yeah.
0: You need to get someone else to talk nonsense with you.
1: With us.
2: At Southampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry-expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search Southampshire College Group.
3: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
4: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. Awaz FM on 99.8.
5: बड़ा शुक्रिया सोना साड़ी पसंद है गाने दाए ने बड़ा मजा आया बड़ा एंजॉय किया ते मुझे सारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया बहुत अच्छा प्रोग्राम कमियां पे बहुत अच्छा बोलियां बड़ा प्यार आया

0: How do you say it? A was or a was?
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
2: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. Awaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community Radio, we're all about here.
4: We are always looking for new presenters on Awaz FM Southampton. Email us at info@awazfm.co.uk to find out more.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: Oh no, how do we get finish listeners?
4: Hey girl.
5: Hey boy.
4: Would you be my baby doll?
5: Sure, if you promise.

0: From the South's premier city, this is Ours FM 99.8.
1: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
3: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. Awaz FM on 99.8.
4: From St Denis to St
3: AB and on the internet. Awaz FM on 99.8.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: लाइफ को अटकना नहीं आता तो फिर हम और आप क्यों रुकें? इस तेजी से दौड़ती जिंदगी का साथ दो, जिंदगी चले बिना रुके।

0: आवाज, आपका रेडियो, आपके शहर में आवाज एफएम।
1: मैं राज राम जी बोलता हूँ भैया। अली भैया, मेरी एक फरमाइश है, अगर हो सके तो बजा देना मेरे लिए, तुम रूठ के मत जाना। फिल्म है फागुन, रफी और आशा भोसले की आवाज में। थैंक यू।

0: तुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना। मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना।
1: From Southampton and Portsmouth on digital DAB radio and online around the world, this is Hours FM.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
3: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.
4: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
5: Awaz FM is supporting local radio

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: How do you say it? A was or a was?

0: की आवाज, आपका रेडियो, आपके शहर में आवाज FM।
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए आप अपने आवाज FM पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज FM के साथ।
2: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
4: Get your favorite song on the radio. Contact us now.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: Hello, I'm Sapia Cole. You are listening to Avaaz FM.

0: Our new jingle could just be us saying we need a new jingle.
1: We need a new jingle, yeah.
2: You're listening to Awaaz FM 99.8 megahertz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
4: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
5: Radio, the medium that's now large.
6: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@awaazfm.co.uk.
7: साउथहैम्पटन एक खूबसूरत तारीखी शहर समंदर की नीली लहरों के किनारे ये आबाद शहर अपने अंदर कितने राज छुपाए हुए हैं मेरी जवानी का शहर जिसकी गोद में मैंने कितने सुनहरे दिन गुजारे हैं मैं तुम्हें सलाम करता हूँ इसी शहर के दिल के अंदर हमारा एक कम्युनिटी रेडियो आवाज़ ने जन्म लिया है और इसके अंदर भी कितनी आवाज़ें पोशीदा हैं उनमें एक प्रोग्राम शेर नगमा भी है ज़िंदगी के दो बड़े साथी हमारा शेर नगमा हर जुमरात को दिन के 2 बजे शुरू होता है मेरा नाम मकबूल अहमद सईद है और मेरे बादशाह आसिफ अली साहब मेरे नगमागर मेरे साथ होंगे हमारे दरबार के दरवाज़े सब के लिए खुले हैं ज़रूर इसमें शामिल हों वक्त किसी का दोस्त नहीं ये सांसों की जादूगरी न जाने कब थम जाए वक्त के साथ चलें वक्त की तज़ीम करें आखिर में दो शेर जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर था यह खुशबू जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर था यह खुशबू ये वो हंसता रोगी जाने जिसने ज़ख्म छुपाए हैं शम्मे बज़्मे तरब बुझ जाए फिर अपने भी पराए हैं दिन डूबे तो छुप जाते हैं साए आखिर साए हैं

0: एक पल की लापरवाही।
1: अंकल मुझे तो बड़ी हो के एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था। मुझे बड़ी हो फिर डॉक्टर बनना था। मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: हम सॉरी बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड। की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली।

0: आई एम सॉरी बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: I don't think there's any love lost between those two.